नट नारायण राग दे अधीन गुरु ग्रंथ साहब विच एक होर राग रूप मिलता है, वो है नट। असल विच नट नारायण राग नट दी ही एक प्रकार है, पर दोनों राग भिन्न अते स्वतंत्र राग हैं। जिथे गुरुदेव ने नट नारायण की वरतों की है, उत्थे स्पष्ट तौर पर नट नारायण महला चौथा पंजवा आदि लिखा है। नट नारायण का स्वभाव है काला, ये काल मिटदी है ना दे अमृत जल नाल। नाम नाल मन ठीर हो जाएगा, नटखट नहीं रहेगा, नट नारायण दी थां नर नारायण ले लवेगा। खिन खिन नर नारायण गावे है, मुख बोले है नर नर हरे। मन दी स्थिरता लई नाम अमृत जल है, बाणी दे सार विच जिस नाल निस्तारा होना है। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। इस राग दे आरोह विच सत्ते सुर अते अवरोह विच धैवत अते गंधार वकर ढंग नाल लगदे हन। दोनों मध्यम लगदे हन। इस दे गौंग दा समय राग दा दूसरा पहर है। राग नट नारायण विच पहला शब्द मेरे मन सेब सफल हर काल, ले गुरपग रेन रवाल। गुरु रामदास जी पातशाह जी दी रचना। इस शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई परमजोत सिंह जी। दूजा शब्द सरवण करो भाई हरिंदर सिंह हरचरण सिंह जी फक्कर। गुरु अर्जन देव जी दी रचना है। उलाह नू मैं काहू न दियो। पहला शब्द मेरे मन सेव सफल हर काल।

परमेश्वर की प्राप्ति हुई है। साथ संगीत बोलो श्री पाई साहब भाई गुरदास जी अपनी बाणी

अखो सतनाम श्री श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज उन्हां दी रसना चों निकलिया होया महान फैसला साच कहूं सुन लेओ सवे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। सेवा ते सिमरन दो चीजां ने। दास बैठा बैठा कीर्तन करदे ही सोच रहा सी जो सिमरन है उनू गाउणा ते उनू सुनना ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਉ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਉ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਗਾਉਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਉ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ ਭਾਉ ਹੋਵੇ जिस सेवा नूं लै लईए ते तां वी महाराज जी दा फुरमान है सतगुरु की सेवा सफल है शर्त जे को करे चित लाए। इहदे च वी चित लगा प्रेम होवे फिर आ कृपा वरसदी है मन चिंदिया फल पावना ते होमे विच्छों जाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच सेवा बारे भी सिमरन बारे भी सतगुरु जी दे फैसले इहदे विच प्रेम होवे। चार तरह दे जीव धरती ते वसदे ने। वीरवार दे सत्संग विच रूटीन विच आए हो गुरु नानक पातशाह दी दुकान दे उत्तों जिथे जिथे जगह मिले बैठ के सौदा खरीदना जरूर मन दी पत्री फरोलनी के इना चारां विच्चों असी किथे पहुंचे हां। चार तरह के जीव ने धरती ते एक है मिल क्लास एक थर्ड क्लास एक मध्यम क्लास एक उत्तम क्लास। एक मिल एक थर्ड एक मध्यम एक उत्तम। निल कौन ने जिन्हां नूं बिल्कुल रब वाले पासे दी ना लगन है ना ज्ञान है बिल्कुल निल है ही नहीं किसे खाते च। ओ जीव खाली आउंदे ने खाली चले जांदे ने। थोड़ा जा नक्शा वेखना होवे ते निल क्लास वालियां दा श्री गुरु तेग बहादुर महाराज मेरे पोरियां च बैठ के बंदगी करन वाले चित आया ते दुनिया नूं तारन लई भी निकले ने। एक पंधेरी नगर है सतगुरु महाराज दे सिखां ने जदों उत्थों दे प्रबंधकां नूं सुनिया दिता वी नौवें पातशाह आए ने गुरु नानक दी जोत उन्हां ने हल्के लफज बोले
ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੋਹਾਂ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਲ ਵਿਚ ਨਾ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਜਾਓ। ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਜਵਾਨ ਰਾਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤਖ਼ਤੇ ਤੇ ਵੀ ਲਟਕਾ ਦੇਵੇ। ਦੋ ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ

अगम अगोचर अत वड़ा बड़ा वड़ा है अतुल जिन्नू कोई तोड़ नहीं सकता ओदा कोई अंत नहीं पा सकता उस राम कोई तोड़ नहीं सकता।

कीमत की ना पाई है। उस परमेश्वर की कीमत कोई नहीं पा सकता, ते ना ही पैसों के नाल ओ राम किधरों मिलता है। गुरु साहब ने कहा जो कोई इंसान ये कहे कि पैसों के नाल मैं रब न पा लवांगा, साहब जी कहते नहीं कीमत दे नाल ओ नहीं मिलता,

जाना माथे तिलक मथे दे तिलक ला ले हाथ विच माला फड़ ले ते राम राम कह लिया थोड़ी देर सारा दिन झूठ बोलिया ते समझिया कि हुण बस राम खुश हो गए भगत जी कहंदे ने।

राम खिलौना जाना लोका ने राम नु खिडौना समझ ले। कोई बच्चा रुस जाए मिठिया मिठिया गल्ला करके बच्चे नु मना लेने। ऐसे तरह लोग रब नु समझदे ने जो मर्जी करी जाओ जिन्ने मर्जी पाप करो झूठ बोलो बस थोड़ी देर राम राम कर लांगे वाहिगुरु कर लवांगे ते बस साडे पाप खत्म। पर कबीर साहब कहंदे ने नहीं ओ राम कोई खलौना नहीं बच्चा नहीं जेड़ियां तुहाडियां गल्लां।

पर जदू ए नाव दे कोल पहुंची बेड़ी दे कोल ता मन विच सोचदी है कि मंदिर दा पुजारी कह रहा सी जेड़ा इंसान राम राम कहंदा ओ ते संसार सागर तू पार हो जांदा ए ता छोटी जी नदी है जे संसार सागर आदमी राम राम कह के पार हो सकदा है ते मैं राम राम कह के ए नदी क्यों नहीं पार कर सकदी मन विच भरोसा राम ते बजदी राम राम करदी ए नदी दे विच वड़ी ते देखदियां देखदियां तुरदी तुरदी नदी दे अध विचकार चली गई पानी दे उत्ते इस तरह तुरी जांदी है जिवें के लोक धरती ते तुरदे ने और देखदे देखदे आराम आराम कहंदे आ ए नदी पार कर गई हुण जदों आंदी है तां वी राम राम कह के नदी दे उत्ते तुरदी आंदी है जदों वापस जांदी है उदों वी राम राम कहंदी नदी पार कर लैंदी एक दिन मन विच ख्याल आया मैं राम राम कह के नदी पार कर लैनी है पानी उत्ते इस तरह तुरनी है इस तरह तुरनी है पानी उत्ते जिवें लोग धरती ते तुरदे ए राम मैनू मंदिर दे पुजारी ने दस्या है ते क्यों ना उस पुजारी नू घर बुला के ओनू रोटी खुआवा प्रशादा छकावा ओदी सेवा करा गुजरी तैयार होके घरों चल पई उसी तरह राम राम कहंदी नदी पार करके मंदिर जा पहुंची बड़े प्यार नाल कहा पुजारी नू पंडित जी अज चलो मेरे नाल मेरे घर चल के रोटी खाओ प्रशादा छको पंडित जी तैयार हो पे अगे अगे गुजरी ते पिछे पिछे ए पंडित जी चल पे तुरदे तुरदे जद नदी दे कोल आए पंडित जी कहन लगे उस गुजरी नू के बेड़ी नाव ता दूसरे पासे है तू केड़े पासे आ गई है गुजरी कहन लगी पंडित जी बेड़ी दी नाव दी की लोड़ है जद राम राम कह के इंसान संसार सागर तू पार हो सकदा है ते फिर बेड़ी दी की लोड़ है ए नदी ता छोटी है राम राम कह के इथू भी पार हो जावां पंडित जी कहन लगे ए थोड़ी हो सकदा के राम राम कही जाइए ते नदी तू पार हो जावां गुजरी कहन लगी तुसी मेरे पीछे पीछे आओ तुसी ते कदों दे राम राम कहंदे हो मैं ते हुणे कहन लगी हां ते नदी पार कर जानी हां ए कह के राम राम कर दी ए गुजरी नदी दे उते पानी दे उते तुरन लग पई ए देख के राम राम कहंदे पीछे पीछे पंडित जी भी तुर पे जद थोड़ी दूर गए पानी डूंगा सी ते जाके गोते खान लग पे जद डुबन लगे ते उस गुजरी नू कहन लगे ए आप ते मरेगी नाल मैनू भी मारेगी ओ गुजरी ते राम राम कहंदी नदी पार हो गई ते पंडित जी डुबदे डुबदे मसा बचे ते बड़ी मुश्किल दे नाल किनारे ते आके लगे हुण सवाल ए पैदा हुंदा है राम राम ओ गुजरी भी करदी है ओ नदी पार कर गई राम राम ए पंडित भी करदा है पर ए डुबदा डुबदा बचिया
कारण की कारण यह हुई जो गुरु अमरदास पातशाह कहते ने कि राम राम से सारा संसार कहते पर सारे नूं मिलदा नहीं मिलदा किनू जेड़ा पखंड ना करे बल्कि मनो राम राम।

कबीर बौरा है ए कबीर बौरा है ए पागल हो गया पर कबीर सब कहते मैनू कोई पागल कब मैनू कोई बौराना कब मैनू कोई फर्क नहीं क्योंकि मेरे मन का दर्द मेरा प्यार मेरा आराम जानता है मैनू दुनिया की परवाह नहीं।

मी बंद होया कह लगे काका जा हुण जाके जंगल विचू लकड़ा लाया ताकि लंगर बना ली। कह लगा मना दो तीन मील पहला तुर के जंगल विच जाऊ फिर लकड़ा कट के फिर ती चुक के लैके आऊ बड़ा औखा काम। कह लगा गुरु जी गल ए है तुसी इथे मैं तुर के जंगल विच जावां तुहाडे वाल मेरी पिठ हो जाएगी तुहाडे वाल मेरी पिठ होवे ए पाप मैं किवें कर सकदा ए पाप मेरे कोल ना करवाओ। ओ कहन लगी चंगा भाई तेरी मर्जी। आपे गए लकड़ा कट के लिया लंगर तैयार किया लंगर बन गया। ओ गुरु कहन लगे आ काका लंगर छक ले। कहन लगा गुरु जी गल ए है कि दो हुक्म मैं तुहाडे पहला नहीं मन्ने जे ए भी ना मन्या ते घोर पाप हो जाएगा इस करके लंगर मैं जरूर खा ले। कहन दा भाव कि जे गल्लां दे नाल ही कहिए कि रब मिल जाए सेवा भी ना करिए सच दी कमाई भी ना करिए तां रब किवें मिलेगा। गल्लां दे नाल ना स्वर्ग मिल जाए ना उस राम दी प्राप्ति हुंदी।

कसंबे दा रंग कच्चा हुंदा है। कपड़े नूं रंग चाड़ो धोवो सारा रंग उतर जांदा है। इसे तरह जेड़े लोग रब दे नाम ते लड़दे ने रब नूं वखरा वखरा करके समझदे ने समझो कि उन्हां उत्ते राम दा अल्लाह दा वाहिगुरु दा रंग चढ़िया।

साहिब मैं उसका चेहरा जिड़ा रहनी रवे जिड़ा मेरे कहे विच चले जिड़ा रहत विच पूरा होवे ओ मेरा सिख ते मैं ओदा चेला रहनी रहे सोई सिख मेरा ओ साहिब मैं उसका चेहरा रहत बिना न सिख कहावे रहत बिना जिड़ा ना बाणी पड़ी ना अमृत धारी ना रहत च पूरा साहब जी कहंदे ने सिख किवें हो सकदा ते रहत तो बिना ओ चोटा खावेगा दुखी होवेगा।

तू पाई जिन्ना मर्जी प्यार कर पर पराई औरत नू अपनी मां समान समझ जिहड़ा ये गल्लां मन्नेगा साहिब जी कहंदे ने वो असल विच रहत।

गुरु साहब जी कहंदे ने ओनू जमा दे धक्के पैण गए, ओदा मेरे नाल कोई संबंध नहीं, जिहड़ा धी भैण दा पैसा खा लो ते बहुता दाज मंग के लैणा तंग करना ते भी तां ओही पैसा है। ते साहब जी कहंदे ने जिहड़ा नजायज करे किसे नूं तंग करे धी भैण दा पैसा खा लो, ओदा ते मेरा संबंध कोई नहीं, ओनू जमा दे धक्के पैणगे।

फरमावे मैं चुपे पराया हक खावे पराई निंदिया करे ता गुरु साहब जी कहंदे ने ओनू राम ओनू वाहिगुरु किस तरह मिले कहन नू ते सारा संसार राम राम कहंदा वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदा पर सारिया नू

तू एक बारी कहता सही के तेन किन्ने मारे। कह लगा बादशाह मैं किसी को डरदा नहीं, सिर्फ आप दुसवा परमेश्वर दुसवा, मैनू किसी ने नहीं मारिया, जे किसी ने मारिया भी है ते बादशाह उन्होंने खिमा कर दे। पर साहबा नु गुस्सा सी इस सेवादार नु मारे है, जिहड़ा 24 घंटे सेवा च रहिंदा सिमरन विच रहिंदा। साहबा ने कहा जिन्हें भी इस सिख नु मारे है वो अपने आप हाजिर हो जावे, नहीं तो बहुत बुरी सजा दी जाएगी। जिन्हां ने सिख नु कुटिया सी उठ के खड़े हो गए, आके चरना ते डिग पे। कहन लगे पातशाह सानू खिमा कर दियो। साहब जी कहन लगे तुसा इनू क्यों मारे है? कहन लगे महाराज इस करके कि तुसी जदों भी आंदे सी इस सिख नू गले लगांदे, जिहदे कपड़े भी गंदे हुंदे ने, साडे वल तुसी देखदे नहीं, इस करके असी इनू मारिया कि यह मर जाएगा तो तुसी साडे नाल प्यार करो। साहब जी कहन लगे भाई जे मेरी खुशी लैनी उस गुरु नानक दी खुशी लैनी ता सेवा करो। मैं शरीर दी सुंदरता चंगे कपड़े दे के खुश नहीं हुंदा, मैं ता मन दी सुंदरता देखना। इहदे कपड़े भावे मैले ने पर इहदा मन सुंदर है, सेवा करता है सिमरन करता है। हुण उस सिख ने हाथ जोड़े जिन्हों कुटिया सी, कहन लगा पातशाह कृपा करो इन्हां नूं भी बख्श लो, भावे इन्हां मैनू मारे पर इसे वास्ते मारे कि तुसी इन्हां नाल प्यार करो। साहब जी कहन लगे हां तू कहना है तां इन्हां नूं माफ कर देने। हुण ओ जिन्हां ने सिख नूं कुटिया सी हुण सेवा विच लग गए, सिमरन विच लग गए। साहबा ने कहा सेवा करो सिमरन करो, तुहाडे ते वी ओ गुरु नानक दयाल होवेगा। ते भाई जिहड़ा ना सेवा करे ना सिमरन करे उहनूं किवें राम मिलेगा? कई झाड़ू भी मारनगे ते मन विच ख्याल होवेगा सानूं कोई देखे आखे कि सेवा कर रहे है। एहो जी सेवा थी।

जैसो गुरु उपदेसया मैं तैसो कहया पुकार। कह नानक सुन रे मना कर कीर्तन हुए उधार। कल युग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया लाए ध्याना। आप तरह सगले कुल तार हर दरगह पत सिंह जाएंदा।

जिज्ञासु कौन है, सत्संगी कौन है, जिहड़ा सवाल करता है जाके, हे गुरु हे महापुरशो मैनू दसो, मैं चौरासी विच फसया होया हाँ, मैं हनेरे विच फसया होया हाँ, मेरी जिंद दुखां विच फसी हुई है, मैनू दसो कोई रास्ता, ये सवाल करता है।

0: बिन हर नाम ना शांत होए कित विद मन
1: धीरे।
0: किस तरीके दे ना मन धीरज भी चल जाए, किस तरीके दे ना मन दी गति रुक जाए, किस तरीके दे ना ए मन जड़ा दशा दिशा में भज्या फिरदा है, सुपने विच भी नहीं टिकदा, सुत्ता प्या भी टिकदा नहीं है, संगत विच भी नहीं टिकदा है, सब कुछ पाके भी टिकदा नहीं है। कबू जिगेड़ा ऊब चढ़ता है, कबू जाए पायाले, लोभी जेरा थर न रहता है, चारे कुंटा
1: पाले,
0: वस्तु नहीं मिलती दुखी हुंदा है, जदों मिल जाती है फिर होर वध दुखी हुंदा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: सो बिन हर नाम ना शांत होए कित विद मन धीरे, केड़े तरीके दे नाल मन धीरज विच आ जाए, किस तरीके दे नाल मन दी गति धीमी पै जाए, कुछ कंट्रोल विच हो जाए। बिन हर नाम ना शांत होए, गुरु जी कहिंदे हन बाणी दे विच, रब दे प्यारे दसदे नूं भाई असीं विछड़े होए हां भाई, तू इस करके दुखी है, तू विछड़िया होया है, अपने मालक तो विछड़िया होया है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: अपने मालक तो विछड़िया होया है, तू अपने केंद्र तो टुटिया होया है, तू अपने धुरे तो अलग होया होया है, जिन्ना चिर तू नहीं मिलता उन्ना चिर तेनों दुनियावी शांति घड़ी दी घड़ी भावें मिल जाए, परंतु असल शांति नहीं मिलेगी। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: क्योंकि शांति भी तीन तरह की होंगी है, एक शरीर तल की शांति, शरीरक तल की शांति, शरीरक भोग पदार्थ खाण पीन के नाल जवान थोड़ा चिर बस पेट भर जूगा, जवान थोड़ा चिर बस कह देगी, परंतु थोड़े चिर बाद फिर वो ही भुख लग जाएगी। इसे तरह मन, मानस भोग पदार्थ ते फिर कुछ चिर वास्ते मन तृप्त हो जाएगा, सदी भी तृप्ति नहीं है। आत्मक शांति जिहड़ी है जो परमेश्वर दे नाल जुड़िया सत्संग सेवा सिमरन दे नाल मिलदी है, उही सदीवी शांति है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: उही सदीवी शांति है जो आके जांदी नहीं है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: सो उस नूं आत्मक शांति कहिंदे हां। सो नहीं तां गुरबाणी दे विच गुरदेव बहुत प्रमाण दे दे के खोल खोल के समझाते हैं, मैं तू बाकी छोटे मोटे की गल्ला छड़ दे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जप्त होए
1: सुखिया,
0: सारी सृष्टि का राजा क्यों ना बन जावे हे मनुख, सारी सृष्टि का। अब बाकी माड़ी मोटी गल छोड़ो, छोटा मोटा कोई अपना बन जाना, कोई अहुदा मिल जाना, कोई इलाके का बालक बन जाना, कोई होर कुछ माड़ा मोटा ज्यादा कुछ बन जाना, सारी सृष्टि का राजा सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज फरमान करते हैं भाई, जेकर वह रब दे नाल नहीं जुड़िया, जेकर वह परमात्मा का नाम नहीं जपता, जेकर वह उस दाते भुल गया है, फिर उसकी सारी सृष्टि की, सृष्टि के मालक की हालत की है,

0: सगल श्रेष्ठ को
1: राजा दुखिया
0: सुखी कैसे होएगा भाई। हर का नाम जपत होए
1: सुखिया,
0: परमेश्वर का नाम जप के ही सुखी हो सकता है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: सो सत संगत, हुण फिर असी सोचते हाँ भी नाम जपना कि सानू नाम जपने वाली सुख मिल सकता है। फिर बड़ा औखा है नाम जपना, दुनिया छड़नी पवेगी, संसार का त्याग करना पवेगा। हां संसार का त्याग करना पवेगा, मोह ही दुखां का कारण है। सारे दुखां का कारण मोह है, सारे दुखां का कारण अज्ञान है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: फिर तो भाई बड़ा औखा हो जाएगा, दुनिया छड़ दी, सारी दुनिया किवें छड़ जावांगे, किवें सारी दुनिया जंगल नूं तुर जाएगी। फिर तो असीं जावांगे नहीं गुरुद्वारे, ऐसे साधुओं कित्थे जावांगे। नहीं, गुरु नानक जी ने सत संत कृपा की थी, दुनिया नहीं छड़ाई परंतु दुनिया का मोह छड़ाता। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: बोलो धन गुरु नानक,
1: धन गुरु नानक।
0: दुनिया तो नहीं छड़ाई, योगिया ने दुनिया छड़ाती, बड़े बड़े राजे पर्थरी वर्गे सात संगत तो उन्हां दे कन्ना पाड़ के मुंदरां पवा दित्तियां, परंतु मन फिर भी शांत ना होए। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: योग दे नाल भी योग सिद्ध आसन 84 ए पी कर रहा, बड़ी आरजा फिर जन्म है, हर सिंह संग ना
1: गहया।
0: तीर्थां दे बैठ गए, वेदां दे पाठ कीते, शास्त्रां दे पाठ कीते, बड़ी तरह दी पूजावां कीतियां, फिर भी मन शांत ना। पाठ परिवार वेद विचारियो, निमर प्रहंगम साधे, पंच जना सिंह संग ना छोड़ के, अदक अहां बुद्ध बाधे, प्यारे इन विद मिल ना जाई। मैं किए कर्म
1: अनेका,
0: अनेकां ही कर्म कीते, मैं किए कर्म अनेका, हार परे स्वामी के द्वारा दीजा बुद्ध
1: विवेका।
0: बड़े जतन कीते, बड़े तरीके अपनाए, परंतु फिर भी मन शांत न होया। बोलो
1: सतनाम
0: भरथरी योगी श्री नारद जी की उपासना करते हैं, नारद जी की आराधना करते हैं, नारद जी के सुपने विच दर्शन हुए। हां भाई क्या चाहते हो? शांति, मुक्ति, परमेश्वर का मिलाप। 500 साल की मेरी उम्र हो गई है, कितने जोग कमाले हैं मैं, रिधियां सिधियां भी प्राप्त हो गई, अजे भी कहते हैं हे नारद

0: हे नाब, मैनू कोई ऐसा तरीका दसो। नारद जी ने पता है की कहा? नारद जी ने कहना कीता, हे पार्थर, इसका इलाज मेरे को नहीं है। मैं तेनों एक तरीका दस दिंदा हां, रास्ता दस दिंदा हां। संसार ते गुरु नानक प्रगट हो गए, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: हे पार्थरी, इधर उधर चोटा खाण की लोड़ नहीं है। दुनिया का मालक दुनिया ते आ गया है, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: उथे तेन शांति मिलू, तेन सब कुछ मिलू, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: हे नारद जी, फिर मैनु कोई रास्ता दस दो, कोई ढंग दस दो, उन्हां दा कोई चक्कर चिन्ह दस दो, स्वरूप दस दो, किथे पैदा होए ने ओह। श्री दशमेश मंगू, मैनु दसो, मैं उन्हां दा दर्शन किवें करांगा, मैं उन्हां नू किवें मिलांगा, मैं किवें उन्हां दी शरण विच जावां। कहना कीता, हे पार्थरी, तू इस तरह नहीं मिल सकता। तू उन्हां नू आराध, याद कर, बेनतियां कर।

गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन न कर, मुझ में गुण है। और मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया तो एक रागी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था, हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोलिए, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती। यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है, जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने उतने निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती, नीचे होते चले गए।

पहली तुक है मेरे मन राम नाम नित गावी रे अते दूजे शब्द का कीर्तन कर रहे हैं बीबी गुरिंदर कौर जी। शब्द बोध हैं सरनी आयो नाथ निधान। पहला शब्द मेरे मन राम नाम नित गावी रे।

सतगुरु गुरु गोविंद सिंह साहिब जी दे अनन प्यारे सिख कथन करदे ने, अगर तेरा दिल पवित्र है ते वाहिगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर तेरे अंदर वसदा, ते जे तेरे नेत्र साफ हन उन्हां विच ज्ञान दी दृष्टि है, मंदिर वल वेख, मस्जिद वल देख, चर्च वल देख, इमाम शाफे वल देख, सारे जगह ते तैनु ओ व्यापक मौजूद नजरी आएगा, क्योंकि सारा संसार एक दी उपज है, एक माता पिता दी होंद है।

अपने पिंडां विच रिश्तेदारी विच कई बार ऐसा भी संगत ना कीती होवे मन दा संकल्प भी बन जाए कि इहदे किसे सुखे दुखे नहीं जाना। ये गल फिर ये भी निकल दी है इहदे संस्कार ते नहीं मिल जाना। आ दूसरा जे ना गुण आवे जिंदगी च उस बच्ची नूं मैं कहा तू की कहनी है भी सारा जगत तेरे दिमाग ना चले तेरिया सहेलियां तेरे दिमाग ना चल जे तेनों उहदे च कोई औगुण नजर आया हुण कोई समझौता कराण आया उहनूं जर जाना मिलाप वल वधना। सारी दुनिया साडे दिमाग नाल नहीं चल सकती किदे किदे नाल कंध पावांगे किदे किदे नाल वैर रखांगे औगण नाल वैर कर ला बंदे नाल ना कर इस तरह किसे दे औगण नूं जर के ते फिर मेल कर लेना आखो सतनाम समां कलेश दा लंघा देना ये भी गुरु प्यारियो दूजा निर्दन नूं पालना जिहड़ा अजकल अत लोड़ है अत लोड़ है। मैं कहना घरेलू लैवल ते भी लोड़ है नूहां सस्सां नूं भी लोड़ है दराणियां जठाणियां नूं भी लोड़ है ननाणा भरजाइयां नूं भी लोड़ है गुरुद्वारियां विच भी इहदी लोड़ है बैंकां विच भी इहदी लोड़ है दफ्तरां विच भी इहदी लोड़ है दुकानदारां तों भी इहदी लोड़ है गलियां बाजारां च भी इहदी लोड़ है भी भी पच्ची पच्ची दुकानां इक बाजार च हुण उहनां नूं भी इहदी लोड़ है। प्यारिओ जे इह होएगा एक दिन एहो जा आ जाएगा लोग उंगल करके तुहाडे वल कहणगे ये रब दा रूप है ये नहीं लड़दा क्या फालतू नहीं लड़दा क्यों तेनू निर्धन नू पालना आ गया तू कमियां वेखणियां छड़ती किते समझाना पिया ते प्रेरणा ना ये भी निर्दन नूं पालना किसे दे औगण नूं जर के कलेश दा समां लंघा देना ते अज जिहड़ा तीसरा निर्दन नूं पालना किसे दा हक ना मारना। सारे प्यार नाल आखो सतनाम ये भी निर्दन नूं पालना कि किसे दा हक नहीं मारना। तीन तरह के हक होंदे एक है माया का हक मारना दूसरा है धर्म का हक मारना ध्यान देना तीसरा है सेवा का हक मारना। कोई होर डूंगी जुबी मारे तो होर भी लभ सकता है पर यह तीन तरह के हक होंदे ने ये मारने नहीं किसे माया का हक मारना मैनू याद है दो साल हो गए ने एक बीबी आई सी ते कहण लगी भाई साहब आ मेरा 200 गज का प्लाट है तो मेरे को एक कागज लिखा लो कहती भी जिन्ने चिर तक मैं जींदी हां मेरे ना रहेगा जदों मैं मर जावांगी तो यह भलाई केंद्र दे ना। मैं क्या बीबी तेरे पुत्र किन्ने ने कहती दो मैं क्या उन्होंने क्यों नहीं देंदी उन्होंने दे कहती नहीं बहुती सेवा नहीं वो करते ते मैं ता कहनी हां भी ये मरण तो बाद भलाई केंद्र तुसी इत्थे इधर लो। मैं कहा जे ते मन हैगा देण दा ना ते जींदियां लई मरण तो बाद मैं तेरे पुत्रां नाल झगड़े करांगा है जी ओ कहणगे साडी मां